गुरु नानक सच्चे पातशाह कलयुग दे महान अवतार उन्हां दी वड्याई भाई साहब भाई गुरदास जी सिख धर्म दे महान विद्वान उन्होंने अपनी कलम नाल कीती है। बड़ा सुंदर ए प्रसंग गुरु नानक सच्चे पातशाह जी दी सिद्धा नाल ज्ञान चर्चा विचारधारा गोष्ठ जिथे भी कोई रब तू भुलिया इंसान गुरु नानक बाबा नू नजर आया सतगुरु उथे आप पुजे। संसार दी रीति है भई महापुरश वली पीर पैगंबर उन्हां कोल दुनिया जांदी है पर गुरु नानक सच्चा पातशाह आप लोगां कोल जांदे रहे। बाबा काशी गए बनारस गए हरिद्वार गए गया जी गए क्यों गए भई लोगां दा तीर्थां ते इकट्ठ हुंदा सी ते बाबा जी उथे अपने विचार सुणांदे सन लोगां नूं सिद्धे मार्ग ते लांदे सन। बटाले दे लागे बिल्कुल नजदीक क्योंकि बटाले विच गुरु नानक सच्चे पातशाह जी दे सौरा परिवार सी ते लागे अचल बटाला है ओ सिद्धां दा बहुत वड्डा गढ़ शिवरात्रि दा मेला लगा होया सी ते गुरु नानक ने सुनहरी मौका तकिया कहण लगे मर्दाने आ चल गरीब नवाज पातशाह सत बचन। भाई साहब भाई गुरदास जी लिखदे ने

अपनी शक्ति नाल वो जेड़े लोटे विच लोग पैसे पा रहे सन वो लुका दिता। भाई साहब, भाई गुरदास ने बड़ी प्यारी बात कही। भाई साहब कहंदे ने

खादी कुणस जुगी सिरा। जिस वेले बंदे नू अपनी हार हुंदी दिस पवे ना, ए आम बात है, फिर वो झगड़े ते उतर आंदा।

फिर उन्हों के घर मंगन जाई बिन दिते किच हाथ न आई ए सुन बचन जुगीसरा पैसा कहने हूं झगड़ा कर लगे गुरु नानक नु डराउन लगे अपनी शक्तियां दा प्रभाव पाती ए सुन बचन

हे नानक जी तुहाडी बड़ी महिमा सुनी, मेरी सुनी नहीं वेख भी लई है। तुसी शक्तियां दे मुजस्मे हो और कुछ सानू भी विखाओ। सिद्ध बोलन सुन।

बाबा जी जिस वेले मुल्तान गए ना ते उथे दे पीरां नू पता लगा के वड्डा पीर आया एदे अगे साडी दाल नहीं गलनी ते उन्हां ने अपने एक सेवक नू अपने चेले नू एक दुध दा छन्ना भर के भेजिया जिदा मतलब सी भी पीरीपुर मुल्तान इथे तेरी लोड़ ही नहीं इथे अगे पीरां नाल भरिया पिया तेरी की लोड़

एक लोभी पुरुष पदार्था विखे बड़ा लोभ करदा सी, पर लोकां नूं पत्यान वास्ते प्रभु दा सिमरन भी बड़ा करना कि मैं बड़ा भगत ज्ञानी हां, क्योंकि हजूर दा वचन है जो जाने हो भगत ज्ञानी आगे ठाकुर तिल नहीं मानी, जो जाने हो कथनी करता व्यापारी वसुधा ज्यो बसता, साध संग जिन हो मैं मारी नानक तांकू मिले मुरारी। भाई रब दी प्राप्ति तां उना नूं ही होंदी है जो निम्रता दे नाल निष्कामता दे नाल मन करके परमेश्वर दी भगती करदे हन। ए लोकां नूं पत्याउण वास्ते विखाउण वास्ते बड़ियां मालां फेरदा है, बड़े सिमरन करदा है, बड़ियां बगल समाधां ला पैंदा है। ते बाबा फरीद जी कहंदे हन कि ए भगती भाई परवान नहीं, उसदे इस पखंड नूं देख के ता फरीद जी ने ए शलोक उचारण कीता, फरीदा जां लब ता नेहो क्या, जिथे लोभ है उत्थे नेहो क्या, उत्थे परमेश्वर दा प्यार की होना, नेह की होना, उत्थे ता केवल माया दा ही प्यार है। लब ता कूड़ा नेहो किचर घत लंघाइए, छप्पर टुटे मेहो। हे भाई जे पदार्थां दा लोभ है तां प्रभु विखे सच्चा प्यार किवें हो सकदा, जे खुदा दा नेहो प्यार है तां पदार्थां दा लब करना तां फिर कूड़ा है, क्योंकि दो गल्लां इकट्ठियां नहीं हो सकदियां। जे प्रेम है तां लोभ नहीं, जे लोभ है तां प्रेम नहीं। इसलिए भाई जे प्यार करना है तो सच्चा प्यार कर गुरु दे नाल, ऐसे लेख ना लिख जदों तू अकाल पुरख वाहिगुरु दे दरबार विच जावे ते तैनू अखां नीवियां करनियां पैन, शर्मिंदियां होना पवे। इसलिए

आख्या ए सोना मनुच्छा जन्म अमृत वेला अमृत वेले रूपी सोना मनुच्छा जन्म प्राप्त होया ते तू इसनू सौके बतीत कर देवेगा। ऐ मेरे मन तू बहाने कर रहे हैं भाई गलियां चिकड़ दूर घर करने ने हो रब दे नाल प्रीति पौनी ते फिर सरफा करना भाई मते ए कंबली ए लोई भिज ना जावे तो फिर तेरा प्यार कदा होया। तां फरीद जी कहंदे हन गलियां चिकड़ दूर घर नाल प्यारे ने हो चला तां भिजे कंबली रहा तां टुटे ने हो आख्या भिजो सिजो कंबली अलो बरसे में हो। एवी तां उदे हुकम विच बारिश हुंदी है ते तू उदे हुकम दी अदूली करके जे सत संगत विच नहीं जांदा ए लेख ना लिख तेरी नितनेम दी कड़ी इत्थे तेरे आलस करन नाल जे बिना जपन दे बतीत हो जावे ए लेख ना।

पग दा मत मैली हो जाए, गहला रूह ना जाने सिर भी मिट्टी खाए। एक रजोगुणी पुरुष जो फरीद जी दे पास आया, मथा टेकिया, ते मथा टेकन लग्या ओ पूरी तरह ना चुकिया, भई मते पग ना मैली हो जावे। उच्चारण करो श्री वाहिगुरु। तब बाबा फरीद जी कहंदे न, भई वेखो इसनू पुलावा पग दा है, भई मते पग मैली ना हो जावे मथा टेकन लग्या। पर इस अणभोल पुरुष नू ए नहीं पता, भई एक दिन ए सिर भी जिस सिर ते पगड़ी बनी है, इस सिर नू भी मिट्टी ने ही खा जाना है। उच्चारण करो श्री वाहिगुरु।

हृदय हृदय नहीं, जिस हृदय विच साईं दे मिलन दी शिक नहीं आवसी। आख्या ओ हृदय, ओ हृदय तां शमशान भूमिका है, उस हृदय विच तां भूत प्रेत वस रहे हन, जिथे साईं दे मिलन दी शिक नहीं आवसी। जेड़ा सिर गुरु दे अगे नहीं झुकिया, ओ सिर कादा होया, जो सिर साईं नानवे सो सिर दीजे डार। आख्या नानक जिस पिंजर में बिरहा नहीं, सो पिंजर ले जार। ऐसे हृदय नू जला दे, ऐसे शरीर नू छड़ के सुआ कर दे, जिस शरीर विच वाहिगुरु दे मिलन दी सिक नहीं आवसी। क्योंकि ए सुल्तान भगती है बैराग, मालक दे याद विच जुड़ के भजन विच जुड़ना सिमरन करना, ए सुल्तान भगती है।

खड़ोता। एक हनेरा सी, दूजा उसनू घट दिसदा सी लोहार नू। चंगा मुड वेखण वास्ते उस लोहार ने कुहाड़े दा पिछला पासा वगा मारिया बाबा फरीद जी नू। उस कुहाड़े दे वजन नाल फरीद ने नेत्र खुले ते लोहार नू खड़ोतियां वेख के आप दे नेत्रां तो जल आ गया ते ए शलोक उचारण कीता। कंध कुहाड़ा सिर घड़ा वण कै सर लोहार, फरीदा हो लोड़ी सहो अपना तू लोड़े अंग्यार। ए लोहार कंध कुहाड़ा, कंधे ते रख के कुहाड़ा, सिर पर पानी दा घड़ा चुक के ते फिर बन विच फिर रहा है लकड़ लभदा। ते फरीद जी कहंदे न तू कोले लोड़दा है, तू लभ रहे है कोई चंगा जिहा मुढ़ लभ जाए उसनू कट के साड़ के कोले करके घर लै जावां।

के काल जो है ए मौत रूपी कुहाड़े नूं हर वेले चुक के हर मनुख दे नाल है। परमेश्वर दे हुक्म अनुसार ए जीव आत्मा नूं ले जांदा है। फरीद जी कथन करदे हन, मैं तां अपने पति खुदा दी प्राप्ति नूं चाहुंदा हां ते तूं मेरे अंगियार औगणां नूं वेखना चाहुंदा है। इस दे विच कोई औगण होवे तां मैं इस नूं फड़ के लै जावां। कदों इस दे श्वास समाप्त होण ते मैं इस नूं लै जावां। तो फरीद जी अपने प्यार विच रंगे होए उस लोहार नूं कह रहे हन, भाई तू अंगियार नूं लोड़ रहे हैं, जंगलां विच असीं रब नूं लभ रहे हां। कंध कुहाड़ा सिर

धन गुरु तेग बहादुर सोच लै भाई धार लै अपने मन में किसी धार लै मतलब वसा लै मन में सिर्फ चार दिन की गल है बंदा नाल तकबर फरिया कूड़े करदा माने मैं हां चतर सियाणा सुंदर शेर आपनू जाने आकड़ आकड़ चले किसे दे नक तले नहीं आने साई लोका जद फूका निकले आवे होश ठकाने ए बंदा जिन्ना मर्जी मान कर लवे पर उदो तक है जदो सब कुछ ठीक है जदो थोड़ी भी चीज गलत हो जावे कहता जी मैं बड़ा तकड़ा हां बलवान पर एक दिन मंजे ते पैजे निढाल हो जाता है। धन गुरु तेग बहादुर मसालो अपने मन में ए राग सिंधी

0: से अर्थ सत तीर्थ परस किए, जैसे अर्थ सत तीर्थ परस किए, युग चार चलो कैलाश
1: बिना गुरमुखा दे कदम सत संगत वाले चल के जाते हैं। किड्डा वड्डा महात्म भाई साहब भाई गुरदास जी ने दसिया है कि जो गुरमुख जन सत संगत च बह के जपते हैं सतनाम, संगत च बैठ के वाहेगुरु जपन का किड्डा वड्डा महात्म है, पर एक शर्त है कि जपे गुरु चरणा दे नाल मन नूं जोड़े। जैसे अठ सठ तीर्थ परस

0: चल शरणपुर एक पैदा जाए जल सतगुर कोट पैदा आगे हुए लेत है।
1: तू एक कदम सत संगत वाले चलता है ते गुरु तैनू करोड़ा कदमा अगो लैण आए। ऐसा गुरु क्यों ना ऐसे गुरु दे बलिहार सच्ची आखिर किन्ना कदमा से लैण आउंदा है कदों गुरु लैण आउंदा है। साहब बाणी विच इसका हवाला दे रहे कि जह मार्ग के गने जाए ना कोसा हर का नाम तू गुरु बस एक कदम रखता है गुरु तैनू करोड़ा कदमा अगों लैण ले आ रहा है। क्यों ये मेरा है ये मेरे पासे आ रहा है। इसे लिए साहब बाणी विच कहंदे हन कि मित्र उस नू बना ओ तेरा सच्चा मित्र है जिहड़ा इत्थे भी ते दरगाह विच भी आके भाई ये मेरा है भाई इस दा हिसाब मेरे पासों दा। सज्जन सेई नाल मैं चलदिया नाल चलन जिथे लेखा मंगिए तिथे खड़े ऐसा मित्र कौन है प्यार नाल आपको धन गुरु गोविंद एक पिता एक सके हम बारक तू मेरा ऐसे गुरु तो सदके जाए ऐसे गुरु तो बलिहार जाए। ये शब्द जो आप सरवण कर रहे हो धन गुरु अर्जन देव पातशाह जी का ये शब्द है। पर जो
2: काहे को दौलत है तुमरी सुध सुंदर सिरी पदमा पतला है। And it's that same message. Why are you wandering? Your husband Lord is so beautiful. God has no lust, no anger, no greed, or worldly attachment. No illness, no fear. God has no body, but he bears love for all. And his love is without condition. He is without home and cannot be destroyed. God gives to those who know it and to those who don't. He gives the earth, he gives the heavens.

ठार किवन किन्हीं निवल भयंगम साधे मोहे दीन हर हर आराधे तेरा भरोसा प्यारे आन न जाना वेसा किन्हीं ग्रह तजवन खंड पाया किन्हीं मोन अवधूत सदाया कोई कह तो अनन भगवती मोहे दीन हर हर ओट लीती किन्हीं कया मैं कुले वडाई किन्हीं कया बां बो भाई कोई कहे मैं धने पसारा मोहे दीन हर हर आधारा किन्हीं भवन